गवाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी। जिना सिंह सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निभाई तिना समूह शहीद सिंह सिंघणिया भजंगियां दी कमाई दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो सतगुरु जी

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जापते हर हर नीत, भले सुकरनी सोभा तनवंत,

सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परिस्यों कहिया केते तेरे गावन हारे।

होए, जेबड़ आप तेबड़ तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नाम बाज सनादरा गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

दम जा आ हर हर जियो परिया सैल पत्थर मैं जंत्यो पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उड़े ऊड आवे सैकोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन मैं सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया

तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख ब्रह्म पर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई।

तुम आपे करें सो होई, तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सेरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब साय का जान होई, आसा महला चौथा, तू करते

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन बजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कारत सिंह को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी, सेव गुण सुख दियो, सत्रण गो बल मो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सफर कृपा दुष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।

तो है। अपना जान करो व्रत बारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, अमरे सब एरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना, कृष्ण जथा मत चरित्रो चारो।

तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव ना जाने मेरा अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाए, वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जस जिठे सब जुग जाए, तेग बहादुर सिमरी है, करनौ नि दयावै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई उन्हां जी सहाय, दसां पातशाहां दी जोत, धन धन धन श्री ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन देदार दा ध्यान दर खालसा साहिब बोलो जी। पंज प्यारे चार साहबजादे, चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाहे, देख के अंडट कीता, तिना प्यारिया सुचारिया की कमाई का ध्यान दर खालसा जी साहेब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणा ने धर्म सिर दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सुआसा संग निभाई, तिना दी कमाई का ध्यान दर खालसा जी साहेब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दर के खालसा जी साहेब बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवै चित आमन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत, देख तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बंगे, जुगो जुगो अटल धर्म का

मेरा सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पंजवां। बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मोह बंध नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मोह बंध नित पारच। माधवे भज दिन नित रैणी जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। रहाओ करत बिकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल ना तारत। भरन पोखन संग आउद बिहाणी जय जगदीश की गत नहीं जानी।

0: जामी शरण समरथ अगोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतर जामी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पितर जुड़ जुड़ बैठी साध संग जी वडभागी बाप जी ने संत मानो चाहजनी प्रिया गुरु साहिब जी कृपा करन सम संगता दे हार दर प्रवान करन दरों करों गुरु सुखी जीवन आमदान बख्शन वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਰਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਰਹਾਓ नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूरन हुई आसा बलावल महला पंजवा ताती बावन लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया एकाल भलाई रहाओ।

साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नींद आहो ना तू मैं छुट्टे निकट न जाइयो दूत। श्लोक महला पंजवा मन मैं चितवो चितवनी उदम करो ठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देव नानक की मीत। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जा घर कीरत आखिया।

नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभाए दुख पावे जम काल सह सिर ढंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुखमंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला ईहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला।

ज्ञानी जिसे जगाए पिया वे एहरस अकथ कथा तिन जानी जाको आए जोई बिहाज हर गुरते मने बसेरा निच कर महल पावो सुख सहजे भौर।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

फेयर किनका एक जिस जिय बसावे ताकि महबा गनी न आवे कांखी एक दर्शुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ गय सिमरन गर्व नाम बसा प्रभ गय सिमरन दुख जम रस है प्रभ गय सिमरन काल पर हराय प्रभ गय सिमरन दुश्मन टराय प्रभ सिमरत कश बिघन ना लागे प्रभ गय सिमरन अंध न जागे।

जैसे राज रंगो लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जो बसुदा, गऊ खोदे गऊ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह, नानक जो बाबा का सह सुभाव।

सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीनाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर भया ब्रह्म ज्ञानी तय काश बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जोगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

ने करते की जाने करता रचना। कई गुण सिद्ध जति जोगी, कई गुण राजे रस भोगी, कई गुण पंखी सर्व उपाए, कई गुण पाथर बिरखन बजाए, कई गुण पवन पाणी बै संदर, कई गुण देश भूमंडल, कई गुण शशियर सूर नक्षत्र, कई गुण देव दानव इंद्र सेरे शतर, सगल समग्री अपनय सुतारे नानक, जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार, कई गुण राजस्थान सात, कई गुण वेद प्राण सिमरत रसास्त, कई गुण किए रतन संबंध, कई गुण नाना प्रकार जंत, कई गुण किए शिर जीवे, कई गुण गिरी मेर स्वरण थीवे, कई गुण जख किन पिसाज, कई गुण भूत प्रे सुगन मृगाज, सब ते नेरा है सब ऊते दूर नानका अलप त्रया प्रभुर, कई गुण पाताल के वासी, कई गुण नरक स्वर्ग निवासी, कई गुण जन्मे जीवे मरे, कई गुण बहु जुन्नी फिरे, कई गुण बैठत ही खाए, कई गुण काले थक पाए, कई गुण किए धरबंध, कई गुण माया मैं जंत, जय जय भाणा तै तै रखे नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, कई गुण भय बैरागी राम नाम संग तिल तिल लिब लागी, कई गुण प्रभु को खो जंते आत्म मैं पार ब्रह्म हंते, कई गुण दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई गुण मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिल लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई गुण खाणी अरखंड, कई गुट आकाश ब्रह्मांड, कई गुट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार बजरियो भासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई गुट किन्ने भवान प्रभ दे ब्रह्मा इस माता का अंत ना जाने कोय, आपे आप नानक ब्रह्म सोए, कई गुट पार ब्रह्म के दास तिन हो बतातम प्रगास, कई गुट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई गुट नाम रस भी में अमृत भय सा सा दी जीवे, कई गुट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को सा सा संभारे नानक परमेश्वर के प्यारे सरो।

अनक जतन कर आदम नहीं दरवे हर दर के को कैसे गवे आपस को जो भला कहा वे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जागा मन होए कहो नानक दाकी तरपण सोए जब लग जाने मोजते का छोए तब सो सुखना ही कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही जीते जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्मदाए दिस जाए प्रभ कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हूं छूटा सहस खटे लाख उठता बै त्रिपत न आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे नैत्र बतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कौ राजा सबन मनोरथ ब्रथे सब गाजे राम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसे प्राप्त होए करन करावन ਪਟਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਆਸ ਕੇ ਆਦਿ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਨਮ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਮਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ आप उपदेशा है समझे आप अपे रजा सबके साथ आप किनु अपन विस्तार सबका सुखाओ करने हा उससे भिन्न कहो कि छोए थान थलंतर एक सोए अपने जलताप करने हार कौता कर रंग आभार मन मया बन अपने बाहे नान कीमत कह न जाए साते साते सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गना बखयानी

अष्टपदी मानुकी टेक प्रीति सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिया रे अगाए बौर्ण दर्शना रागे आए बारे रखे एक मानु कै जनाई हाथ।

सकल संसार त्रेतन मंद प्रभु के सेवक सकल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख बिसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बटभाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तन प्रकोतम करमान जो किस करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो बसो होय करने हार पछाणे सोय प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे उपजे तो समाये समाये ओए सुगर निधान हो बने आया आप सुहाव दिनो मान नानक प्रभु जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जागे सिमरन उदरी आए नानक तसबलेहा राष्ट्रपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे परत पाल सगल की चिंता जिस मन बाहे तस्ते बिरथा गोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी पर व्यापे आप अपन किया कशु न होए जैसो प्राणी लोचा गोए तस्बिन नाही तेरा कश काम गत नानक जब एक हर नाम रूबन दो नाही मुह है प्रभु की ज्योत सकल घट सुबह तरबंता वे क्या गो गर्भ जा सब की तिजगा दिया द्रभ अत सूरा जय कहू कहावे प्रभु की कला बिना कहता वे जय कहो हे बहे दाता अर्थ देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यो गुरु का शब्द मन या स्थमन ज्यो पा खाणना चढ़ तरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरा जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होय विकास ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे दे साधु संग मिल जोत प्रगट आवे धन संतन की बाछो दूर नानक की हर लोचा पूर पूर मन मूर्ख का है बिरजाइये पूर्व लिखेगा लिखिया भाइये दुख सुख प्रभ देवन हार बल त्याग तू तसे चितार जो कुछ करे सोई सुखमान भूला गाहे फिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लपटा राहे ओ रास रोभी पतंग राम राम जब हृदय माहे नानक पद सिद्धि कर जाहे

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत बिसारु चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम अरवाथ एतन संजो हो भगवान संजना का निर्मल मन दे का सराखो मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुंट उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कुरत बाचे भीत सो सुख साधु संग प्रीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसको शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की सरणियन को भावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दरगे प्रमाण मन प्रबुद्ध हर के राय दय दस्तावते आ बैठाए ताको विघ्न न लागे कोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण होयास भक्त पाया तन मरगास तितकर जाए बसे बनासी का मनान काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का छो का छा आवा गमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का वो उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंजत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तो क्या लपटा मैं मूर्ख मना सुतमीत गुटा पार बनता इनते कहो कमन इनते कहो तो कमन सना था इनते कहो तुम कमन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार आ सस्ती रथ सवारी झूठ रम झूर बाजारी जिंदी तस बजे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरु की मातु ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन भी नरम है तुम्हारो जीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गिरवे के जाहे आप जब अबरा नाम जबाबो संत गहत रात कद बाबो सार पूछा तिर को नाव सह सुभाए नान गुण गाव गुण गाव त्रिवित्र समैल बिन जाय हमें बखैल ओहे अजंत बस है सुख नाल सास गिरासर नाम संभाल शाठ सियानम सगरी बना सास संग पावे साच तना हर पूंजी सज करो बिहार यहाँ सब दरगह जयकार सर्व निरंतर एक ओदे कव नानक जाके मस्तक लेख एक एको जाप एको सा लाह एक सिमर एको मन आहे एक असगे गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरा पूर्ण पूर्ण रहो प्र व्याप अनक विस्तार एक दे एक रात विराशत गए मंत्र अंदर एक प्रभु राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक

गावर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत भजन अर्गे गुण गाव परांतरण का यह स्वभाव आठ पैर पर बेखो नेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन बदे सिर दे बसाबु मन छे नानक बल पाव हालत बल दे रे स्वार राम नाम अंतर उदार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे तो साज बरिखिया मंत्र नाम जपो ले बलाए दुख दर्द मंते पाओ जाए सजबा पार करो बा पारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बाहर न आवे जाए तसे दूर कहा को जाए बरे राख न हार दे आए निर्भाव जब सगल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तजन का कोई ना बचना सिर पर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदर श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा।

प्रकाश अष्टपदे शांत संग अंतर प्रभु ठाना प्रभु का लागा मीठा सगल समेगरी एक सघाट माहे अनग्रंगना ना दृष्टा हे नाव निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं सगा विश्राम सुन समाद अनत राध कहना जाइय अचरज विस्माद तिन देखा जाब दिखाए नांत जन सोजी पाए स्वंतर सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तरमाया गाज भयाल सब लोग पूर्ण प्रतपाल बंधन प्रभत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म

सेवक ही सेव, आल जंजाल बिगाड़ते रहते, राम नाम संदरसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभारी, नानक निभीखे हमारी। प्रभु की सतगुरु संत मीत, सावधान एकागर जीत। सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिसमन बसे सोत निधान। सर्विच्छा तागी पूर्ण ए प्रधान, पुरख प्रगट सब लोए सप्ते उज पाया स्थान। बाहुर नावे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए। नानक जिसे प्राप्त होए, एम सांत रतना विदिद बुद्ध ज्ञान। सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश। सबके मत सकल देवदास, सुंदर चतुर तत् का बेता। समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख भने। गुरु नानक राम बचन बन सुने, यो निधान जब है मन गोए। सब युग में तागी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी। से मृत सास सर्वेद बखाणी, सगल मतान केवल हर नाम। गोबिंद भगत गए मन विश्राम, कोट पराध सात संग मिटै। संत कृपा दे जमते छुटै, जाके मस्तक कर्म प्रपाए। साध सर नानक दे आए, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत। तिजनाब हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारे। दुलाभ दे तत्काल उदार, निर्मल शोभा अमृता की बानी। एक राम मन माए समानी, दुख रोग बिन से पै परम साध। राम निर्मल तागे कर्म,

ओंकार असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाढ़ असंख जोग मन रह उदास

हैं पवित्राय परथी से अदिसे अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छज देश है क्या भिज भिस है क्या गांज कर्म है क्या भांज भरम है।

गणी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, स्वभावतल राज है, सदा सर्वसार है, स्वभावतल सलाम है, सदैव अकाम है,

जुगत प्रभा है, अन उक्त स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है,

करुण कर है विश्वम पर है सर्वे सुर है जगते सुर है ब्रह्मंड स है खलखंड स है परते पर है करुण कर है अजपा जाप है अथप्पा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है

दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो सात्यय सुन नैनो पठाय, सात्यय सुन नैनो पठाय, शरीर लाय सुनो सत बानी, जेत सुनी मंत्र हरिया हो आरसना रास वाणी।

प्रति गुरु राम दास राखो शरणाई वाहिगुरु जी तात खालसा वाहिगुरु जी फतेह।

कर प्रतपाल नायक खसम हमारे निम्ख निम्ख तुम ही प्रत पालो हम बारिक तुमरे तारे। सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास

पवन है राजाउ। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पर खोतम कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो किए पहरियां काए कर गावना एको ओंकार सतगुर प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडल जब आशत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद नायन स एक अज्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तू नरहर मनो बिसारिया। फिर पछतावेगा मूड़िया तू कवन कुमत भरम भग लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा मन विचरे अनुराधा रहा। बाल बिनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस में समेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे। जाप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या छलिया काम काल मत लागी तो मान आन सकत कर बांधिया। तरण तेज पर त्रह मुख जो है सर अवसर ना पछाणिया मन काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख अर मन गर्भ आराम हृदय तय खोया वरमृत माया मन तो लय तौ भग मुख जन्म विगोया। उन्नर केस कुसुम ते धौले सबत पताल की बाणी लोचन सिमरै बुद्ध बल नाठी ता काम पवस मधाणी। तांते बिखे पई मत पावस काया कमल कमला नावगत बाण छोड़ अमृत मंडल तव पाछे पछताणा। निकटी देख दे देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी घर आंगन ना सुखाई। बेनी कह सुनो रे भगतो मुरण मरण मुकुत किन पाई श्री राग। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। जाओ पै हम ना पाप करन ताहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता रहा। तुम जो नायक आशा अंतर जामी प्रभ ते जान जानी जे जानते स्वामी। शरीर राधे मुको विचार देहु रविदास समदल समझा वेको राग माज। चौप दे घर पहला महला चौथा एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूरत आजुनी सहभंग गुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चल जियो मैं हर हर खर चलया बन पलै। मेरा प्राण सुखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दिड़ाया मन हर निचल हर तन पलै जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया।

सतगुरु मित्र मेरा बाल सुखाई हों रह ना सका बिन देखिए मेरी माई हर जियो कृपा करो गुर मेलो जन नानक हर धन पल्ले जियो माज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हों हर बिन दूजा वर ना जाना कोई सज्जना संत मिले वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो हौ मन तन खोजी भाल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जियो मैं बिन गुर देख नींद न आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे हर हर दया करो गुर मेलो जन नानक गुर मिल रसै जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौजल दुतर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करे हा मेरे प्रीतम का मैं देह सुनेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर निरहरिए

तमासे तुद आपे तुद भावे सो होना जियो जिस दा दिता सब किछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल।

जो साहेब तेरे मन भावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहेब मन माना जियो तू संतन की करा है प्रतपाला संत खेला है तुम संग गोपाला।

मन भाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा। तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंदम चातरक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम्ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारक पी खीर अगावे त्यों जा त्यों ज्यों निर धन धन देख सो।

कहु नानक भरम कटे के वाड़ा बौड़ न होइए जौला जियो। माज महला पंजवा। तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया।

तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिस का सा तिस ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडपागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीह पाया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो जिसे

सचा सोई बिखड़ा थान ना दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किछ करे सो आपे आपे बुद्ध सियानप किछु ना जापे।

नौ नित नाम भरे भंडारा आदि अंत मत प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला दे दा।

पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेविया तिन्हि सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखद जिन जान तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावे दिन राती सफल हा है कारी जियो दृष्ट तार अपना दास सवारिया खट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेन होर दूजा नाहीं

दर्शन डिठे लहन वजोगा जियो अंचर लाए सब सिष्टे तराई अपना नाऊ आप जपाई गुरबोध पाया कृपा ते नानक।

इस काया अंदर वस्ते असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजामणिया, सच्चा साहब सची नाई, गुरप्रसादी मन वसाई, अनदन सदा रहे रंग राता, दर सच्चे सोजी पावणिया, पाप पुन की सारण जानी, दूजे लागी भरम भुलाणी, अग्ञानी अंधा मग न जाने, फिर फिर आवन जावणिया, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, होमे मेरा ठाकर हाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजरग पाठ खुलावणिया,

0: राष्ट्रपति
1: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
0: कल क्लेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जासव संबरेक
0: नाम जपत अगनत अनेक
1: वेद प्राण सिमर।

0: सुखयमृत प्रभु नाम
1: के मन विश्राम रहाओ।
0: कब के सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभु के सिमरन दुर्गम नसे।
0: कब के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे।
0: कब सिमरत कछु बिघन न लागे,
1: प्रभु के सिमरन अंधन जागे।
0: कब के सिमरन पौ न व्यापे,
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे।
0: कब का सिमरन साध के संग,
1: सर्व दान नानक घर रंग।
0: कब के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निद,
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध।
0: कब के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा।
0: कब के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: प्रभु के सिमरन दरगह मानी।
0: प्रभु के सिमरन होए सो भला,
1: प्रभु के सिमरन सो फल फला।
0: से सिमरे जिने आप सिमराए,
1: नानक ताके लागो पाए।
0: कब का सिमरन सब ते ऊंचा,
1: प्रभु के सिमरन उतरे मूचा।
0: कब के सिमरन तृष्णा बुझे,
1: प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे।
0: कब के सिमरन नाही जम त्रासा,
1: प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा।
0: कब के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नाम रिद माए समाए।
0: प्रभु जी बसे साध की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना।
0: कब को सिमरे से तनवंते,
1: प्रभु को सिमरे से पतिवंते।
0: कब को सिमरे से जन परवान,
1: प्रभु को सिमरे से पुरख प्रदान।
0: कब को सिमरे से बे मोहताजे,
1: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे।
0: कब को सिमरे से सुखवासी,
1: प्रभु को सिमरे सदा विनाशी।
0: सिमरन ते लागे जिन आप दे अल्लाह,
1: नानक जन की मगर वाला।
0: कब को सिमरे से पर उपकारी,
1: प्रभु को सिमरे से सद बलिहारी।
0: कब को सिमरे से मुख सुहावे,
1: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे।
0: कब को सिमरे तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता।
0: कब को सिमरे तिन

0: जय मात पिता सुत मीतरा भाई
1: मन उहा नाम तेरे संग सहाई।
0: जय मां भैन दूत जम दल
1: नाम संग तेरे चल।
0: जय मुश्किल होवे अत भारी
1: हर को नाखिल माए उधारी।
0: अनक पुन्ह चरण करत नहीं तरह
1: हर को नाम कोट पाप पर हर।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे।
0: सगल सृष्टि को राजा

0: प्रसाद सुख से सुई जय
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
0: प्रसाद सबको मन
1: मुक्ता को जस रसन बखान।

0: नरक स्वर्ग निवासी।
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे,
0: कई कोट भोजनी फिरे,
1: कई कोट बैठते ही खाए,
0: कई कोट जाले थक पाए,
1: कई कोट किए